0: जीवियों को लड़ा की जरूर लोग बाने मुझे केरे मारे मारा कर दे पापा
1: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे
0: अरे मास्टर राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे
2: पीछे दांत ली करूं तो मुझको जेल भेज दो सूंघने में क्या है